찬 प्रभु धन्यवाद। जिंदगी मन को ती काम को बंदा एक दुई तीन चार पाँच कक्का को जय भाको।

ती बेला मैचन की गर्दयोलिन पीढ़ी मा बसेरा के कुरा गर्दियो कहिले।